जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज्र करेंगे, तुम कहना कि उज्र मत करो, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, खुदा ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी खुदा और उसका रसूल तुम्हारे अमलों को और देखेंगे, फिर तुम गायब व हाजिर के जानने वाले खुदाए वाहिद की तरफ लौटाए जाओगे और जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा।

ये तुम्हारे आगे कस्में खाएंगे ताकि तुम उनसे खुश हो जाओ, लेकिन अगर तुम उनसे खुश हो जाओगे तो खुदा तो नाफरमान लोगों से खुश नहीं होता।

ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में मुझे बेखिलजान रहेगी और उनको मुतरद्दिद रखेगी, मगर ये कि उनके दिल पाश पाश हो जाएं, और खुदा जानने वाला हिकमत वाला है।

और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं।

और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इस पर ईमान ले आते हैं और कुछ ऐसे हैं कि ईमान नहीं लाते, और तुम्हारा परवरदिगार शरीरों से खूब वाकिफ है।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, प्रोग्राम हयात तैयबा की 11वीं नशिस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, पिछली नशिस्त में हमने जनाब हज़रत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का तज़किरा किया था। आज हम इस हयात तैयबा के सिलसिले को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। कुरैश का नुमाइंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हजूर में इन दोनों बतले जलील यानी हज़रत हमजा और हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म व तुग़यान के बादल छटना शुरू हो गए और मुसलमानों को जोर व सितम का तख्ता मश्क बनाने के लिए मुशरिकीन पर जो बदमस्ती छाई थी इसकी जगह सूझबूझ ने लेनी शुरू की। चुनाचे मुशरिकीन ने एक कोशिश की कि इस दावत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जो मंशा और मकसूद हो सकता है इसे फरावा मकदार में फराहम करने की पेशकश करके आपको आपकी दावत व तबलीग से बाज रखने के लिए सौदेबाजी की जाए। लेकिन इन गरीबों को पता ना था कि वो पूरी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपकी दावत के मुकाबले पर एक

0: की हैसियत भी नहीं रखती, इसलिए इन्हें अपने इस मंसूबे में नाकाम और नामुराद होना पड़ा। इब्ने इसहाक ने यजीद बिन जयाद के वास्ते से मोहम्मद बिन काब करजी का बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उत्बा बिन रबिया ने, जो सरदार कौम था, एक रोज कुरैश की महफिल में कहा, और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह तने तनहा तशरीफ फरमा थे, कि कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इनसे गुफ्तगू करूं और इनके सामने चंद अमूर पेश करूं, हो सकता है वो कोई चीज कबूल कर लें, तो जो कुछ वो कबूल कर लेंगे इसे देकर हम इन्हें अपने आप से बाज रखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने ये देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद बराबर बढ़ती ही जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबू अल वलीद, आप जाइए और इनसे बात कीजिए। इसके बाद उत्बा उठा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया, फिर बोला, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा और मकाम है और जो बुलंद पाया नस्ब है वो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने इनकी जमात में तफरका डाल दिया, इनकी अकलों को हमाकत से दोचार करार दिया, इनके माबूदों और इनके दीन की ऐबचीनी की, और इनके जो अबाओ अजदाद गुजर चुके हैं इन्हें काफिर ठहराया। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, इन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अल वलीद, कहो, मैं सुनूंगा। अबू अल वलीद ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि माल हासिल करो, तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम सब में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ, और अगर तुम ये चाहते हो कि एजाज़ो मर्तबा हासिल हो, तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फैसला ना करेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ, तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफा नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश किए देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि तुम शफायाब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। उत्बा ये बातें कहता रहा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब फारिग हो चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अल वलीद, तुम फारिग हो गए? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, अब मेरी सुनो। उसने कहा, ठीक है, सुनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान की चंद आयात तिलावत फरमाई। हाँ मीम, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। अरबी कुरान इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं बशारत देने वाला है और डराने वाला है, लेकिन अक्सर लोगों ने एतराज किया और वो सुनते हैं, कहते हैं कि जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते जा रहे थे और उत्बा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टेके चुपचाप सुनता जा रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की आयत पर पहुंचे तो आपने सजदा फरमाया और फिर कहा, अबू अल वलीद, तुम्हें जो कुछ सुनना था सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उत्बा उठा और सीधा अपने साथियों के पास आया। उसे आता देखकर मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम, अबू अल वलीद, तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो चेहरा लेकर गया था। फिर जब अबू अल वलीद आकर बैठ गया तो लोगों ने पूछा, अबू अल वलीद, पीछे की क्या खबर है? उसने कहा, पीछे की खबर यह है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वैसा कलाम वल्लाह मैंने कभी नहीं सुना। खुदा की कसम, वो ना शेर है, ना जादू, ना कहानत। कुरैश के लोगों, मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मेरी राय यह है कि इस शख्स को इसके हाल पर छोड़कर अलग थलग बैठ रहो। खुदा की कसम मैंने इसका जो कौल सुना है इससे कोई जबरदस्त वाकया रूनमा होकर रहेगा। फिर अगर इस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के जरिए अंजाम पा जाएगा, और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी, और इसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सादत का बायस होगा। लोगों ने कहा, अबू अल वलीद, खुदा की कसम तुम पर भी इसकी जुबान का जादू चल गया। उत्बा ने कहा, उस शख्स के बारे में मेरी राय यही है, अब तुम्हें जो ठीक मालूम हो करो। एक दूसरी रवायत में ये मस्कूर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जब तिलावत शुरू की तो उत्बा चुपचाप सुनता रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस कॉल पर पहुंचे, बस अगर वो रूगर्दानी करें तो तुम कह दो कि मैं तुम्हें आदो समूद की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह कर रहा हूं, तो उत्बा थर्रा कर खड़ा हो गया और ये कहते हुए अपने हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुंह पर रख दिया कि मैं आपको अल्लाह का और कराबत का वास्ता देता हूं कि ऐसा ना करें। इसे खतरा था कि कहीं ये डरावा ना आन पड़े। इसके बाद वो कौम के पास गया और मस्कूरा गुफ्तगू हुई। सामईन, यहां पर लेते हैं छोटा सा वक्फा। वक्फे के दौरान आप सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वक्फे के बाद हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग को। अभी ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फिजान बता रहे थे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के मुतालिक। इससे पहले कि मैं दोबारा डॉक्टर फिजान के पास जाऊं और मजीद मालूमात हासिल करूं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की, यहां पे मैं ये बताता चलूं कि यूसीपी और खासकर डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली 25% स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है गिवन दैट दे मेंटेन अ सर्टेन CGPA। देन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अप टू 100% तक अवेलेबल है इफ़ यू मेंटेन अ सर्टेन CGPA। इन एडिशन यू हैव किनशिप स्कॉलरशिप, अगर आपके बहन या भाई कोई UCP से पढ़ चुके हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप दी जा सकती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप्स, ये चंद वो मजीद स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं। अब चूंकि हम स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे थे तो मैं वापस आता हूँ अपने मेहमान डॉक्टर फैजान की तरफ और उनसे मजीद मालूमात लूंगा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की।
2: जी, जैसे मैं बता रहा था कि इस फुल ब्राइट में हर फील्ड के लोग अप्लाई करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग के लोग मेरी नज़र में बहुत कम अप्लाई करते हैं और ज़्यादा स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग का। US में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज सिविल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ फील्ड्स पर रिसर्च कर रही हैं और अगर आप एक मास्टर्स और PhD की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द मोर प्रोमिनेंट फील्ड्स आपके चांसेस शायद ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होना पड़ेगा, बट आई वुड एनकरेज एवरीबडी इवन सिविल इंजीनियरिंग बैचलर्स टू डेफिनेटली थिंक अबाउट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। इसमें एक चीज़ है जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और वो है GRE। GRE एक टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश को टेस्ट किया जाता है और उसकी बेस पे आपकी ग्रेजुएट स्टूडेंट कैपेबिलिटीज को एक तरह से असेस किया जाता है और US में अक्सर यूनिवर्सिटीज GRE का स्कोर डिमांड करती हैं और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी GRE का स्कोर डिमांड करती हैं। तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि GRE कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है, यकीनन एक लेंथी प्रिपरेशन प्रोसीजर है उसका, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से इतने काबिल होते हैं कि वो आराम से GRE को डील कर सकते हैं। तो GRE से घबरा कर आपको अमेरिकन अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए।
1: जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा क्या US में TOEFL रिक्वायर्ड है या IELTS भी चल जाता है?
2: TOEFL और IELTS दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं। बेसिकली जब आप यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट एप्लीकेशंस को असेस कर रहे थे, जैसे आजकल हम लोगों के पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी में ग्रेजुएट एप्लीकेशंस आई हुई हैं, तो हम लोग देखते हैं डेफिनेटली कि उनकी इंग्लिश की क्या कैपेबिलिटी है। तो हम लोगों ने कोई हार्ड एंड फास्ट TOEFL ओनली या IELTS ओनली पॉलिसी नहीं बनाई हुई। कोई भी टेस्ट जो कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट है हमें एक आइडिया दे देता है और उसकी बेस पे हम इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं और ऑफ़ कोर्स इंटरव्यू में तो फिर पता चल ही जाता है कि किसकी स्पोकन लैंग्वेज कैपेबिलिटी कितनी है। तो डेफिनेटली एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, चाहे वो IELTS हो या TOEFL हो, वो आपको दे देना चाहिए और दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं।
1: अच्छा, अगर BSc सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे? अगर हम इस पर आएँ तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, आपके पास प्राइवेट सेक्टर है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स हैं। ना सिर्फ ये कि आप इंजीनियरिंग की जॉब कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स में भी आ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं। अगेन, देर आर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, देर आर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, एंड वाइल यू टीचिंग यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट एज वेल। तो एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करना, एक कंट्रैक्टर फर्म में काम करना, ये दोनों में क्या क्या फ़र्क है, अगर इस पर कुछ रोशनी डालें?
2: मेरा ख्याल है दोनों ही एक्सपीरियंसेस बहुत वाइटल हैं, बहुत ज़रूरी हैं और दो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं ये। कॉन्ट्रैक्टर के साथ जॉब करना, एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है डिज़ाइन को, उसमें ह्यूमन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के डिज़ाइन नहीं कर रहे, तो आप टेक्निकली साउंड हैं तो आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर पाएंगे, लेकिन अगर आप टेक्निकली साउंड हैं लेकिन आप ह्यूमन डीलिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर जॉब में शायद आपके ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्किल्स काम आते हैं और शायद आपके टेक्निकली थोड़ा सा कम साउंड होना भी चल सकता है। हाउएवर इन ए डिज़ाइन फर्म आपकी टेक्निकलिटी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए, उसमें आप सबसे ज़्यादा साउंड होने चाहिए, और ऑफ कोर्स ह्यूमन स्किल्स वहाँ पे भी काम आते हैं, लेकिन शायद उसने वैरायटी ऑफ लोगों से आप डील नहीं कर रहे होते, तो इट्स ईजियर दैट वे। मेरा ख्याल है कि अगर आप एक पूरे सिविल इंजीनियरिंग करियर की बात करें तो आप एंड अप हो सकते हैं किसी भी साइड पे, लेकिन आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस दोनों साइड्स का होना चाहिए ताकि आप बाद में जब डील करें दूसरी साइड से, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंसल्टेंसी में डिज़ाइन का करियर बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर से डील करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो इस वजह से दोनों साइड्स का एक्सपीरियंस होना या एटलीस्ट एक्सपोजर होना ज़रूरी है मेरे ख्याल में।
1: अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत अहम है आजकल और जिसका कहना चाहिए इज़ अ बज़ वर्ड, दैट इज़ AI। तो AI क्या है और क्या इसके सिविल इंजीनियरिंग में कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है, इसके मुतालिक अगर हम बात करें तो डॉक्टर फिजान, आप AI यूज़ कर रहे हैं या अगर कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में किस फील्ड में आप AI समझते हैं यूज़ हो रही है?
2: अच्छा, AI का यूज़ डेफिनेटली हर जगह पे हो रहा है इस टाइम, लेकिन कुछ जगह पे डायरेक्टली हो रहा है, कुछ जगह पे इनडायरेक्टली हो रहा है। डायरेक्टली यूज़ की मिसाल ऐसे है कि जैसे आप डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको असिस्ट कर सकती है आप डिज़ाइन करने में, तो आपका बहुत सारा वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है उसमें। ऑटोडेस्क वगैरह के डिफरेंट प्लगइन्स आ रहे हैं जो कि AI एनेबल्ड हैं। मैं पिछले साल एक बिल्डर्स शो पे था लॉस वेगस में, वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देखी मैंने जिसमें एक प्रोफेशनल स्पोकन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू एक घर का डिज़ाइन बनवा रहे थे। सो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है डिज़ाइन में, और ये एक डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI की एग्जांपल है। इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हर जगह हो रही है और पाकिस्तान में भी हो रही है, वो है जनरेटिव AI, यानी कि ChatGPT जैसे जनरेटिव AI लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके थ्रू लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में उनसे हेल्प ले रहे हैं, और उससे यकीनन उनका वर्कलोड काफ़ी कम हो रहा है। तो AI की यूज़ इस तरह से मैं डिवाइड करता हूँ, डायरेक्ट यूज़ और इनडायरेक्ट यूज़।
1: जी, हम AI पे बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वी विल बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग FM 92.6 UCB की।

0: सिक्स बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक एवरीबॉडी, यू आर लिस्निंग टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ AI इन सिविल इंजीनियरिंग। इसी पे अगर हम आगे चलें, जैसे कि डॉक्टर फिजान ने बात की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ AI है, अब रिसर्च में अगर हम बात करें तो रिसर्च में AI की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बात करें, आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में चले जाएँ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड की रिसर्च में आप जाते हैं तो आजकल फोरफ्रंट पे AI है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ रिसर्च करियर, कीप दिस इन माइंड कि AI की एप्लीकेशन इट्स वेरी वेरी वेरी क्रूशियल एंड यू शुड नो AI और उसका एप्लीकेशन कैसे है और किस तरीके से यू विल यूटिलाइज इट टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। इस टॉपिक से अगर हम आगे चलें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग करता है, पाकिस्तान में तो हमने बात की बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। अगर हम अब्रॉड की बात करें तो जो सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए, दैट आई सपोज वुड बी द गल्फ। तो डॉक्टर फिजान, इस गल्फ की मार्केट को आप किस तरह देखते हैं, और अगर एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, गल्फ में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे सिक्योर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे?
2: जी बिल्कुल, गल्फ़ जो है मेरे ख्याल में इस टाइम सबसे ज़बरदस्त जॉब मार्केट है सिविल इंजीनियर्स के लिए। उसमें सऊदी अरब हाइलाइटेड है क्योंकि सऊदी अरब में इस टाइम रैपिडली ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है और पूरे के पूरे नए शहर बन रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और ये जॉब्स कम अज़ कम अगले डेकेड तक ज़रूर रहेंगी। तो इस वजह से जो आज सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला ले रहे हैं उनके लिए भी ये जॉब्स अवेलेबल होंगी जब वो पास आउट होंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग सबसे बेहतरीन जो स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनसे अपने स्टूडेंट्स को मुतारफ़ करवाएं और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब रेडी हों जब वो ग्रेजुएट हों। इससे मतलब ये भी है कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कोड्स का, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स का, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स का अंदाज़ा हो और गल्फ स्पेसिफिक भी उनको ये एक्सपोजर मिले। तो मेरा ख्याल है अगर एक ऐसा ग्रेजुएट जिसको ना सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की फंडामेंटल्स का पता है बल्कि साइट गल्फ स्पेसिफिक चैलेंजेस का भी पता है, वहाँ के कोड्स एंड रेगुलेशंस का पता है, तो वो एक ज़बरदस्त और बड़ा हॉट कैंडिडेट बन जाएगा एक गल्फ में जॉब के लिए।
1: जी आपने बहुत बेहतर बात की कि यू शुड लर्न जॉब रेडी स्किल्स, और यही चीज़ है जो UCP के सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को बाकियों से मुमताज़ करती है। हम न सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, बल्कि वी डू आर लेवल बेस्ट टू गिव यू दी ट्रेनिंग टू दीज पर्टिकुलर टूल्स एंड स्किल्स दैट यू नीड to enter not only the Pakistani market but the market in Gulf as well as other countries. Isme ek bahut bahut important cheez wo aapki English communication skills hai, aur unfortunately hamare paas ek zyada tadad aise students hote hain, aur ye sirf UCP ki main baat nahi kar raha, across the board Pakistan ki universities mein jo students aa rahe hain wo ghalban iski ahmiyat ko samajhte nahi, जबकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने डिज़ाइन को, अपनी बात को बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। और चूंकि हम बात कर रहे हैं अब्रॉड की, तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है, दैट इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज राइट नाउ। अगर आप इंग्लिश में इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो हाउ एवर द इंजीनियरिंग नॉलेज दैट यू हैव, यू वॉन्ट बी एबल टू produce anything good from that. Why? Because you won't be able to share your ideas and communicate effectively. Ab isko agar hum apne civil engineering program mein le to hum mukhtalif courses mein students se presentations kar lete hain, unse report writing karwai jati hai aur class mein active participation and discussions chalti hain. Ye tamam wo cheeze hain jinko humne बाय डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स कदरे बेहतर हो सकें। अब इससे

0: इज द सेंटर ऑफ ऑल द इनोवेशन और वहाँ पे कंटिन्यूस ग्रोथ चलती ही रहती है एक कंटिन्यूस स्पेस पे. तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स अपने गोल्स को, अपने एम्स को हाई करें और इन इंटरनेशनल मार्केट्स को टारगेट करें. अब यहाँ पर एक जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि आप बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी करके यू कैन नॉट डायरेक्टली गो टू अ जॉब इन द यूएस और इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर वेस्टर्न कंट्री. पॉसिबल है लेकिन इट्स सो रेयर कि इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप ग्रेजुएट स्टडीज को परसू करें, एक मास्टर्स ऑफ एनी फील्ड ऑफ योर चॉइस को परसू करें, आइदर इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, इंग्लैंड भी आजकल लोग जा रहे हैं, वहाँ पर दोबारा से जॉब्स क्रिएट होना शुरू हुई हैं. तो जब आप वहाँ पे मास्टर्स कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जॉब्स इजी हो जाती हैं, पॉसिबल हो जाती हैं, एंड देन यू हैव योर होल लाइफ देयर.
1: जी, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, इसका ये कतन मतलब नहीं कि वॉशिंगटन एकॉर्ड्स एक्रेडिटेड डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है. वो एक्सेप्टेबल है. आप इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन अप्लाई करें और आपकी वॉशिंगटन एकॉर्ड क्रेडिट डिग्री ना हो तो यू हैव टू गो थ्रू अ लेंथी प्रोसेस जिसमें आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं टू फॉर देम टू असेस योर डिग्री. एंड वंस दे हैव गॉन थ्रू दैट असेसमेंट फिर वो आपकी डिग्री को वेरीफाई करते हैं, हाँ जी इट इज इक्विवेलेंट टू देयर डिग्री, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद इमिग्रेशन. लेकिन अगर आपकी वॉशिंगटन एकॉर्ड एक्रेडिटेड डिग्री होती है तो यू कैन स्किप ऑल दैट प्रोसेस. और ये मैंने एक मिसाल ऑस्ट्रेलिया की दी. इसी तरह बाकी कंट्रीज जो कि वॉशिंगटन एकॉर्ड में शामिल हैं आज सिग्नेट्रीज, उनमें आप अपनी वॉशिंगटन एकॉर्ड एक्रेडिटेड डिग्री के साथ एंटर हो सकते हैं. लेकिन चूंकि अब जॉब मार्केट में वहाँ पे भी वहाँ के इंजीनियर्स भी हैं, वो भी कम्पीट कर रहे हैं और आप भी कम्पीट कर रहे हैं बाहर से आके, तो ये याद रखिएगा किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में, वहाँ की हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि अपने ग्रेजुएट्स को पहले जॉब दी जाए. ये चीज़ जब आपकी नज़र में है तो आप याद रखें, आपकी जैसे डॉक्टर फैजान ने कहा, डायरेक्टली वहाँ पे जॉब मार्केट में लैंड करना विद अ जॉब शायद बहुत नामुमकिन ना हो लेकिन मुश्किल ज़रूर है. आसान तरीका ये है कि आप वहाँ पे जाएं और जहाँ के मास्टर्स ग्रेजुएट डिग्री करें, मास्टर्स कर लेते हैं तो यू आर कंसिडर्ड के इन द जॉब मार्केट यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी नाउ. और सेकेंडली जब आपने मास्टर्स कर ली तो आपकी वैसे भी अपॉर्चुनिटीज एनहांस हो जाती हैं. बैचलर्स के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हैं, मास्टर्स के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाती हैं. तो आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया वॉशिंगटन एकॉर्ड एक्रेडिटेड डिग्री को, यूसीपी में प्रोग्राम्स को. हमारे मेहमान डॉक्टर फिजान ने फुलब्राइट स्कॉलरशिप्स के मुतालिक आपको मालूमात दी, यूएसए की जॉब मार्केट को हमने एक्सप्लोर किया और गल्फ की जॉब मार्केट को एक्सप्लोर किया. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इट वुड हैव एडेड समथिंग टू इट. इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा. आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: की जाती है, मेरा नहीं ख्याल है किसी भी ऐसे और मुल्क में की जा सकती होगी, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, और जब वो पाकिस्तान आते हैं और जब यहाँ की शादियाँ चेक करते हैं और जब शादियों में देखते हैं किस तरीके से घर से घर का हर अफराद किस तरीके से इमोशनली भी कनेक्ट है और फिज़िकली भी उसमें किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट इन कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं सब चीज़ों को देख के। तो मेरे ख्याल से यही एक हमारे पाकिस्तान की शादियों के कल्चर की खूबसूरती है, जो कि मेरा नहीं ख्याल आपको किसी भी अदर सब में देखने को मिलेगी।
1: ऐसा ही है। अच्छा, आपने बात की कि घर के लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, वैसे अगर हम देखें तो शादियां तो हम जो है अटेंड कर रहे हैं, बचपन से ही अटेंड कर रहे हैं, कभी किसी की, कभी दोस्त की, कभी मुख्तलिफ जो है हमारे माशरे में जो जो भी हमारे अजीज़ अकारिब हैं उनकी कर रहे हैं, लेकिन असल मज़ा और असल जिम्मेदारी का एहसास और शादी होती क्या है वो तब पता लगता है जब आपके घर में किसी की हो रही हो, आपके किसी बहन भाई की, किसी चचा की, किसी करीबी की हो रही हो, फिर हमें सही से पता लगता है कि वो क्या प्रोसीजर है जिससे हम गुजरते हैं, उसके समरात भी और समहाउ नुकसानात भी, क्योंकि हम देखते हैं कि डाइवर्स तो हैं लेकिन शादियों के यहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है और उस हवाले से भी जो है वो एक मुख्तलिफ मसाइल भी पेश आते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़, जिस तरीके से आपने मसाइल की बात की तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ कि ये एक जिम्मेदारी होती है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसके घर में शादी हो रही होती है उसमें हर चीज़ को हर रिश्तेदार को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है, और अगर तो कोई भी रिश्तेदार आपका अगर सेटिस्फाई ना हो पाए आपकी कारकर्दगी से तो मेरे ख्याल से वो आपको बड़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है और बड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं। और यही तो शादी में कल्चर है कि कुछ नुकसान भी होते हैं कि जिस तरीके से कि हम बात करें तो जब कोई कुछ आंटियाँ शादी में इकट्ठी होती हैं और सारा उस दुल्हन को और उस दूल्हे को पूरा डिस्कस करके कि यदि कड़ी नहीं सही है, दया नहीं सही है, दया नहीं सही, एंड में कहते हैं नहीं नहीं सानू फर्क नहीं पैंदा जी, तो ये भी हम कल्चर यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। मगर हम बात कर रहे हैं शादियों की, हमने इतनी डाइवर्स बातें की और बताया कि शादियों में मसले क्या क्या पेश आते हैं, शादियाँ किस तरीके से की जाती हैं, शादी का कल्चर क्या है पाकिस्तान के अंदर, इस सब बात करने का मकसद क्या है नवील भाई आज हमारा?
1: देखिए, शादियों के आपने मसाइल तो हमने ब्रीफली बहुत डिस्कस नहीं किए, लेकिन हमें सभी को मालूम है, हमारे सामीन को भी मालूम है कि बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं, चाहे वो मेहमानों के हवाले से हों, उनके इनविटेशंस के हवाले से हों, या किसी बहुत सारे किस्म के मसाइल होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शादी इतनी स्मूथली जाए कि एट द एंड ऑफ द डे कोई मसला आए ही ना। लेकिन क्योंकि हमारा शो जो है वो नई दुनिया के नाम से है और टेक्नोलॉजी पर शो है, तो हमें ज़रूर इस पर डिस्कस करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या जो है वो रोल अदा, या टेक्नोलॉजी के हवाले से इसमें क्या जो है वो चेंजिंग आ रही है, या कल्चरल चेंजिंग भी कुछ आ रही है।
0: जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हर जगह ही अपनी जगह बना ली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ऐसा सेक्टर और ये एक ऐसी जो एक इसको कह सकते हैं कि कैटेगरी जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जिस पे इतनी ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रही है ये, ना कि अब आके बल्कि शुरू से ही, बल्कि अब आके तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें डिजिटलाइज होती जा रही हैं, शादियाँ भी कुछ ना कुछ डिजिटलाइज होती जा रही हैं। अगर हम आज से पिछले दौर के अंदर जाएँ तो देखा जाता था कि किस तरीके से अगर एक घर के एक अफराद की शादी होती थी तो किस तरीके से कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठे होते थे, आके अपनी जगह बनाते थे, और किस तरीके से रहना ना रीच एंड एवरीथिंग। मगर जिस तरीके से भी आपने बात की मसाइल की और जिस तरीके से भी आपने बताया कि हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, हमारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी का दौर आता जा रहा है, वो सब चीज़ें जो कि हम पहले खुद करते थे, वो सब चीज़ें जो कि हम एक हमारी मैन पावर से बहुत ज़्यादा लगती थी, हमारी एफर्ट जिसमें एक्स्ट्रा माइल जाके लगती थी, अब हम देखते हैं कि वो चीज़ें टेक्नोलॉजी ने ले ली हैं, वो जगह डिजिटलाइज हो गई हुई हैं, वो सब सेक्टर्स जो कि जिस तरीके से अभी हम बहुत सी ऐसी चीज़ों में बात करेंगे आने वाले थोड़ी सी देर के बाद कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शादी के सेक्टर के अंदर भी हम देखते हैं कि डिजिटलाइज होती जा रही हैं, और उससे ना कि सिर्फ एक दूल्हा दुल्हन को फ़ायदा पहुंच रहा है बल्कि एक ओवरऑल शादी के एनवायरनमेंट में वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर हम अभी सिर्फ बात का हम आगाज़ इस तरीके से करें कि शादी में सबसे मेन करेक्टर और सबसे मेन चीज़ और सबसे मेन रोल क्या होता है और उसमें डिजिटल दौर ने किस तरीके से अपनी जगह बनाई है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें उस पर बात करनी चाहिए।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। आज़म, मुझे अगर आप थोड़ी सी इजाज़त दें तो, क्योंकि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी हमने पास्ट की बात की कि डिजिटलाइज हो रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा हम घर में डिस्कस कर रहे थे कि शादी हॉल्स का कल्चर जो है, हम जब से पले बड़े हैं, हमने शादी जब से होश संभाला है, शादी हॉल्स का कल्चर हम देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी शायद आपने भी सुना हो और हमारी एज के जितने भी लोग हैं वो शायद ये सुनते हों कि पहले ये कल्चर नहीं हुआ करता था। तो मुझे अक्सर घर वाले या मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स या दादा दादी घरों में बताते हैं कि पहले किस तरह शादियां हुआ करती थी, जब आप सोचें जब शादी हॉल ही नहीं है तो किस तरह से चीज़ों की एग्जीक्यूशन होती होगी, छोटे छोटे घरों में लोग रहा करते थे तो उन घरों के अंदर किस तरह एग्जीक्यूशन, तो उससे मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि पहले ऐसे हुआ करता था कि लोग जब आते थे, मेहमानों को बुलाया जाता था तो अपने घरों में ठहराते थे, नेबर्स जो हैं वो अपने घर खाली कर दिया करते थे और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, तो हमें एक यूनिटी देखने को मिलती थी, एक भाईचारा, एक कम्युनिकेशन देखने को मिलती थी। तो जो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने इसको जो है थोड़ा सा चेंज किया है। बहरहाल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे समारात हैं और इस फील्ड में भी हैं। अगर हम बात करें तो आपने कहा सबसे ज़रूरी चीज़ आपने पूछी कि शादी में क्या होती है, तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दीनी परस्पेक्टिव से भी और उसके अलावा भी, तो मेरे ख्याल से वो निकाह है। निकाह जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है और सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे अहम चीज़ तो वही है। उसके बाद तो उसको अनाउंसमेंट और उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो भी रवायात और तौर तरीके हैं वो हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, और निकाह एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से हमारे दीन ने भी सबसे पहले इसी की इजाज़त दी है और इसी चीज़ें फोर्स किया जाता है कि जैसे ही बच्चा बालिग हो, लड़की बालिग हो, लड़का बालिग हो, उसकी उसका निकाह किया जाए। और निकाह अब तो आगे ये ट्रेंड्स डिफरेंट ट्रेंड्स आ गए हुए हैं कि किस तरीके से मेहंदियाँ वलीमे और पता नहीं कितने कितने दिनों के एक फंक्शन चलते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर हर बंदे की एक अपनी है, मगर निकाह सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ समझी जाती है, क्योंकि यही जिस तरीके से भी आपने बात की एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इसी के बेसिस पे आपकी आने वाली सारी ज़िंदगी का देखा जाता है। और हम अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें डिजिटलाइज होती जा रही हैं और निकाह के अंदर, क्योंकि पहले तो सब चीज़ें मैनुअली रिकॉर्ड की जाती थी, सारे जो रिकॉर्ड्स होते थे उसको एक खाते के अंदर, एक रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता था। मगर जिस तरीके से भी हमने बात की कि जो सोसाइटी है, जो हमारा ज़माना है, जो दौर है, वो डिजिटलाइज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी ने अपने गलबे को कायम कर दिया कहीं ना कहीं और बहुत से सेक्टर्स में किया, तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर भी टेक्नोलॉजी के हाथों बचा नहीं है। तो हम इससे बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने इस पर किस तरीके से अपनी जगह बनाई है और निकाह में हम आने वाले वक्तों में क्या ऐसी चेंजिंग्स देखते हैं और क्या सब चीज़ें देखते हैं जो कि डिजिटलाइज हो गई हैं और जिससे ना कि सिर्फ लड़का और एक लड़की को फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। इस पर हम बात करेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई दुनिया। ब्रेक से पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया कि डिजिटलाइज हो रहा है, डिजिटल हो रही हैं चीज़ें, पहले टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने देखी कि बहुत तरक्की हो रही है, अभी भी हो रही है, और अब हमें थोड़ा सा जो एक रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है, वो टेक्नोलॉजी के हवाले से और डिजिटली देखने को मिल रहा है। 3G 4G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया किस तरह से रोल अदा कर रहा है इन चीज़ों में। तो आज़म, आप निकाह के हवाले से कुछ बात कर रहे थे।
2: जी, मैं निकाह के हवाले से बात कर रहा था कि निकाह में हम आने वाले दौर के अंदर देखते हैं कौन कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं जो कि निकाह को मेरे ख्याल से मजीद सिक्योर बना रही हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़े से इसके एस्पेक्ट्स को इस तरीके से देखें कि पहले निकाह, जैसा मैंने जिक्र किया कि पहले निकाह किया जाता था मैनुअली, किसी एक लड़का लड़की का एक निकाह है तो एक मस्जिद से एक मौलवी साहब को बुलाया जाता था, उनके साथ एक रजिस्टर होता था और उसमें सारे उनके जो भी रिकॉर्ड होते थे वो उसमें लिखते थे और जो भी उसमें गवाह आते थे उनमें गवाहों की गवाहियां डलती थी और किस तरीके से एक वकील को ऐड किया जाता था और जो भी सारा प्रोसेस होता था और वही एक रिकॉर्ड के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करते थे और वही मेरे ख्याल से एक एविडेंस होता था कि ये अब जो एक पाक रिश्ते के अंदर ये दोनों लड़का लड़की बंध गए हैं आपस के अंदर। मगर अब हम देख रहे हैं कि इस चीज़ में भी चेंजिंग्स आ गई हैं, इस चीज़ भी ये चीज़ भी डिजिटलाइज हो गई है, हमारे मौलवी साहब भी डिजिटलाइज हो गए हैं। हमारे जो खूबसूरत से एक मौलवी साहब होते हैं जो कि मेरे ख्याल से अभी लोगों के सवाल भी बहुत से उठेंगे, मगर हमारे जो खूबसूरत से मौलवी साहब होते हैं उनको भी सोसाइटी ने डिजिटलाइज कर दी है क्योंकि वो भी फेसबुक पे अपनी उनकी एक बड़ी अच्छी प्रोफाइल होती है तो सोसाइटी ने कहा कि क्यों ना आपको टैब भी दिया जाए और टैब के थ्रू अब आपने कहा किया जाए ताकि आप भी जरा बैठे हुए तो मजीद प्रोफेशनल लगे। माशाल्लाह से वो प्रोफेशनल पहले भी लगते थे मगर मजीद उनमें एक चेंजिंग्स को ऐड किया गया।
1: जी आज़म, आपने टैबलेट की बात की, आपने थोड़ी सी डिजिटलाइजेशन की बात की, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता चलूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये तजवीज़ आ रही है कि अब मौलवी हजरात को और जो हमारे इमाम मस्जिद होते हैं मोस्टली इन्होंने ही निकाह का बेड़ा संभाला होता है और यही निकाह ख्वां भी होते हैं और हमारे जो इलाके में निकाह को पढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उठेगा और रजिस्टर पर डिटेल्स डालेगा और निकाह पढ़ा लेगा, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन काउंसिल्स में रजिस्टर्ड होते हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अहम होती है और उसी की बेस पे जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम निकाह कहते हैं, जो दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से बहुत अहम है और एक नए रिश्ते का आगाज़ और तमाम चीज़ें जो हमने गुज़िश्ता ब्रेक से पहले भी हमने डिस्कस की हैं, तो उस हवाले से ये बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है और इसके हवाले से तजवीज़ पेश की जा रही है कि एक टैबलेट का एक सिस्टम लाया जाएगा। पहले हम देखते थे कि मौलवी हजरात जो हैं वो गवाहान की मौजूदगी में जो हैं वो थंबप्रिंट्स और सिग्नेचर्स और तमाम जितनी भी आपको पता है कि जब एक निकाह होता है तो उसके हवाले से डाइवोर्स राइट्स और इस तरह के भी बहुत सारे मामले होते हैं जो निकाह से पहले डिस्कस होते हैं, निकाह से पहले जिनके एग्रीमेंट तय किए जाते हैं लड़के वालों की जानिब से और लड़की वालों की जानिब से, कि हक महर के हवाले से, ये बहुत सारी बड़ी डिटेल्स होती हैं जो हमें बहुत मामूली सी लग रही होती हैं, लेकिन जब एक दफ़ा निकाह हो जाता है और अल्लाह ना करे बाद में इस तरह के अगर कोई मसाइल आए तो ये जो उस टाइम आपने प्रोसीजर जितना अच्छा और एफिशिएंटली किया हो आगे आपकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स और वो तमाम चीज़ें उस हवाले से बहुत आसान हो जाती हैं। तो अब सुनने में आ रहा है कि तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि थोड़ा सा सिस्टम को चेंज किया जाएगा, थोड़ा सा आपने कहा कि डिजिटलाइज किया जाएगा, हम अपने मौलवी

0: रिश्ते को अपने एक पाक बंधन के अंदर रखें और उनको उसको अपने हिफ्ज़ो ईमान के अंदर रखें, मगर कुछ लाइफ में हम मसले देखते हैं क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें कुछ बुराई नहीं है, मगर हम कुछ इस तरह के इश्यूज़ भी सोसाइटी के अंदर देखते हैं। मगर जब आप इस तरीके से अपनी हर चीज़ को अपनी सिक्योर तरीके से एक लेके आगे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आने वाले वक्तों के अंदर अगर कोई आपको इस तरह का मसला दरपेश आता है तो आपके पास ईजिली हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा और हर चीज़ आपके पास सिक्योर तरीके से सेफ पड़ी होगी। मगर मोस्टली हम ये देखते थे कि अगर कुछ कागजात हैं, कोई कागजात ऑब्वियसली बात आप उसको जितना मर्जी सेफ करके रख लो मगर कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं आपसे, बच्चों ने छेड़ दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया। मगर डिजिटल की एक खूबसूरत बात यह है कि आपका जितना भी सारा डाटा होगा वो रिकॉर्ड रहेगा उसके अंदर, ठीक है। अगर रिकॉर्ड अगर वो फॉर एग्जाम्पल कहीं इधर उधर मूव हो भी जाता है तो उसके अलावा जो जहाँ पर वो सब चीज़ें जिस तरीके से अभी आपने बात की गवर्नमेंट की तरफ से ये सब चीज़ों को पेश किया जा रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक रिकॉर्ड को रखा जाएगा और उसकी डिफरेंट कॉपीज भी रखी जाएंगी ताकि अगर तो खुदा ना खास्ता कोई रिकॉर्ड आपका इधर उधर होता भी है तो उसकी कॉपीज अवेलेबल होंगी ताकि कभी भी आपको लाइफ में किसी भी किस्म की जरूरत पड़े उस सब रिकॉर्ड की, उस डाटा की, तो इजीली आप उसको यूटिलाइज कर सको। दूसरी अगर हम बात की जाए जिस तरीके से हमने अभी आपने बात बताई कि जिस तरह की मैंने जब ये फर्स्ट टाइम ये बात सुनी तो मेरे जहन ने ये सवाल उठाया कि हमारे जो यहाँ के मौलवी साहब हैं, जितने भी हमारे मौलवी हजरात हैं, उनका जो रुझान होता है वो थोड़ा सा कम होता है इस तरफ टैबलेट्स में, मोबाइल फोन्स पे और डिफरेंट इन सब चीज़ों पे उनका थोड़ा सा इतना, जिस तरह एक आम हम कह सकते हैं कि लोगों का रुझान होता है, उनको यूज़ करना आता है, उनको उनके सारे फीचर्स और सेटिंग्स सब चीज़ें का इलम होता है किस तरीके से कहाँ पे जाके क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, मगर हमारे जो मौलवी साहब हैं उनको इतना इस चीज़ का खास आइडिया नहीं होता। मगर आपने अच्छा किया ये साथ ही एक चीज़ को क्लियर भी कर दिया कि उनको एक महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उनको आइडिया हो जाए किस तरीके से कहाँ पर क्या काम करना है। अब ये ना हो कि मौलवी साहब बैठे और निकाह करवा रहे हो और साइन कहीं और कर रहे हैं और मौलवी साहब गलत टिक कर बैठे, क्योंकि डिजिटल दौर है, एक क्लिक से कितनी चीज़ें बदल जाती हैं ये तो आपको भी पता है, एक क्लिक से न जाने कितनों की जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं डिजिटल दौर के अंदर। तो मेरे ख्याल से एक मौलवी साहब गलत टिक की वजह से कुछ इधर उधर ना हो जाए काम, मगर फिर भी इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक जो एक माह की ट्रेनिंग है वो देने का ऐलान भी किया है और बताने और सिखाने का भी एक कह सकते हैं कि एक अनाउंसमेंट की है कि हम उनको सिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: आज़म, मैं सामीन को थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस हवाले से अभी तजवीज़ पेश की गई है और देखने में ये जितना आपको लग रहा है कि ये बहुत सिंपल है, जिस तरह हम देखते हैं कि चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, ये सिर्फ डिजिटलाइज नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे मकासद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जिनको मद्देनज़र रख रही है। हम देखते हैं कि अब हर चीज़ डेटा बेस पर चल रही है, हर चीज़ का एक डेटा बेस है, और अगर हम एक किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का डाटा बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो जो बहुत अहम और एक बुनियादी फैक्टर होता है किसी भी गवर्नमेंट का वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि वो किस तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो हैं वो पूरे कर रहे हैं। तो निकाह और ये यूनियन काउंसिल में जिस तरह ये जो हमारी डाटा की कलेक्शन है और इस तमाम ये जो एक प्रोसीजर है ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली हम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से कैरी आउट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये सिर्फ यहां तक नहीं है, वो टैबलेट जो है वो नादरा से कनेक्ट होगा और नादरा में आपको पता है कि एक डेटाबेस है जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स पूरे हाथ के, पूरे जो है वो फिंगरप्रिंट्स दोनों हाथों के होंगे, पांचों उंगलियों के होंगे, उसके हवाले से हमारी तमाम डिटेल भी होगी, हम रहते कहां पे हैं, हमारी उम्र क्या है, हमारे वालदैन और सारी तमाम डिटेल्स। इस डिटेल को क्यों इतना अहम है, क्यों इसको डिजिटलाइज करना जरूरी है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके हवाले से ये जो है हमारे टैक्स के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाएगी, और अगर दुल्हा ने कहीं भी टैक्स नहीं पे किया होगा या दुल्हा साहब मफरूर होंगे या इश्तिहारी होंगे या कोई भी किस्म का उन्होंने क्राइम कमिट किया होगा तो नादरा जब उसको वेरीफाई करेगा तो वो निकाह का जो प्रोसीजर है वो रुक जाएगा, और ये भी एन मुमकिन है कि ऑन स्पॉट जो है वो पुलिस उसको अरेस्ट कर ले और जो है वो एक नया प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। तो जहाँ इसके अच्छे चीज़ें भी हैं तो मुजरिम और इन तमाम लोगों के लिए मसाइल भी हैं, और एक सोसाइटी की वेलफेयर के लिए ये ज़रूरी भी है। ये इसमें मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि टेक्नोलॉजी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारी आसानी, और हमारे लिए जहाँ हर किस्म की आसानी है वहाँ मसाइल को जो है वो हल करने का, और यकीनन गवर्नमेंट की नज़र होती है कि किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को बेहतर किया जाए, क्राइम रेट को कम किया जाए और तमाम चीज़ें, तो इसमें वो वाला बहुत जो है बड़ा पहलू भी मौजूद है जिस पर यकीनन जो है वो काम हो रहा है और इंशाल्लाह हमें जल्दी देखने को भी मिलेगा।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो आपने टैक्स की बात करके हमें भी और मेरे ख्याल से हमारे सामईन को भी थोड़ा सा आपने हिला दिया कि अब आज ही से होंगे, मैं तो आप सब

लोगों को यही कहूंगा कि अपने सारे टैक्स क्लियर करें, ये ना हो कि आप निकाह के उस टेबल पे बैठ के अपना अंगूठा लगाएं और मौलवी साहब आपको हाथ से पकड़ लेंगे, बेटे अपना टैक्स क्लियर करो पहले। तो ये सब चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, और मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं पे ठीक भी हैं और ज़रूरी भी हैं। इसी तरीके से हम मज़ीद इस पे और शादी के जो कल्चर है, अभी तो हमने सिर्फ निकाह की बात की कि निकाह डिजिटलाइज किस तरीके से किया जा रहा है, अभी हम इसे मज़ीद ऐसी बातें करेंगे जो कि मुझे ऐसा लगता है कि और आपको मज़ीद फैसिनेट करेंगी, और बड़ी एक खूबसूरत सी और बड़ी फैसिनेटिंग सी बातें आगे हमारे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आने वाली है। तब तक जरा हमारे साथ बंधे रहिए और इंशाल्लाह आपको जरूर खूबसूरत सी बातें आगे हम बताते हैं।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: City Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is 92.6.
2: जी सामीन, वेलकम बैक. और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सर के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप विन करने के लिए, और पाकिस्तान में रहते हुए जिन जिन चैलेंजेस का फेस करना पड़ा इनको, अभी हम उसके बारे में इनसे पूछेंगे. कि डॉक्टर इमरान, आपको पाकिस्तान में, आपको पता है, बहुत सी हर्डल्स, जब भी हम किसी अच्छे काम की तरफ निकलते हैं बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो पाकिस्तान में आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और आपने उनको कैसे कॉप अप किया?
3: मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की नहीं बात करनी चाहिए. इंसान जहाँ पर भी पैदा हुआ है उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है. और हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे से ज़्यादा चैलेंजेस सहे थे और उन्होंने ज़्यादा तकलीफें सही. तो वह इलाम इकबाल जैसे कहते हैं, खुदा तुम्हें किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं. तो इस तरह से अल्लाह ताला ने वो मौजें जो पैदा किए तो वो हमें मजबूत करने के लिए आती हैं. तो अगर हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम्स के और चैलेंजेस के मुतालिक बदल लें कि ये जो चैलेंज है, अगर मैं वजन नहीं उठाऊंगा तो मेरा जिस्म नहीं बनेगा. तो अगर हम चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझें तो हम ग्रो करते हैं, होप पैदा होती है और नेवर गिव अप की एक फिजा पैदा हो जाती है. और उसमें मेरा ख्याल, अगेन उसी बात पे मैं ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगा, जोर डालूंगा कि अपने दोस्त अच्छे करें. अगर आप अपने अच्छे दोस्त करेंगे, अच्छे लोगों को सुनेंगे, FM 92.6 को सुनेंगे, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. या फैकल्टी आवर को कम लोग ही देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि यह फैकल्टी ने बात करनी है. लेकिन अगर हम सुनना चाहें तो ऐसे प्रोग्राम भी सुन सकते हैं. और प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोग इतने बोरिंग भी नहीं होते जितना हमने बना दिया है.
2: जी डॉक्टर इमरान, नहीं नहीं, अब हमारा फैकल्टी आवर माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल जा रहा है और बहुत से लोग इसे सुनते हैं, बहुत सी उनकी राय भी हमें मिलती रहती है और हम उनके सजेशन को लेते हैं पॉजिटिवली भी, और उनको मजीद भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं. अभी तो लोगों को बहुत इंतज़ार होता है इस फैकल्टी आवर का. तो अभी जो आप ये कह रहे हैं कि बहुत कम सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बहुत इम्प्रूव हो गया हुआ है.
3: तो थैंक यू. तो आपका जो सवाल था मुझे अच्छा लगा कि चैलेंजेस, अगर मैं वैसे इस चीज़ को अगर सही तरह से कहूँ तो चैलेंजेस ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं. और अगर हमने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना हो तो कंफर्टेबल लाइफ गुजारना शुरू कर दें. वो बच्चे जो हर तरह के कंफर्ट में रहते हैं, पैम्पर्ड होते हैं, एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं हर टाइम, वो चाहते हैं कि वो उनकी पूरी दुनिया उनकी खिदमत के लिए मामूर हो जाए, तो वो कुछ खास काम नहीं कर पाते हैं. जितनी भी ज़िंदगी में या दुनिया में तारीख में बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं या उन्होंने कोशिश की है, वो हमेशा चैलेंजेस की वजह से ही उभरे हैं. और मेरा अपना ख्याल है कि हमारे तलबा को जो पढ़ रही है तालीम के अंदर, उनको वो छोटे छोटे मसाइल को हमने बहुत बड़ा बना दिया हुआ है. और उसकी वजह ये भी है कि हर बंदा कंप्लेन कर रहा है, हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, हर बंदा ब्लेम कर रहा है. तो कंप्लेंट, बेशक मैं अक्सर क्लासों में भी कहता हूँ, तस्बीह भी पढ़ना शुरू कर दोगे कंप्लेंट्स की तो कंप्लेंट करने से मसला हल नहीं होगा, मसले को हल करने से मसला हल होगा और सोचने से मसला हल होगा, जैसे रट्टा जो है उससे बाहर निकलने से मसला हल होगा, और ये जानने से मसला हल होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक कैसे तरक्की याफ्ता हो गए. थोड़ा सा उसके बारे में गौर करेंगे, ये सवाल करेंगे कि वो भी, ये पिछले 200-250 साल की कहानी है, 200-250 साल की कहानी कहीं कॉस्मोस देख लें, नील डिग्रेसे टाइसन का. अब तो हिंदी जबान में भी है, उर्दू जबान में भी है, और AI का दौर आ गया है, कुछ भी जानना चाहें तो आप सीख सकते हैं. लेकिन उसके लिए चाहिए यही है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझें, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझें और मेहनत करें.
2: जी डॉक्टर इमरान, तो सर थोड़ा सा हम आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे सामीन के बताएं कि जब आप अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए तो आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी थिंकिंग में, आपके विजन में क्या चेंज आया, और आपने यहाँ पाकिस्तान में आके क्या आपने चेंज क्या लेके आए?
3: मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगरचे बहुत सारे लोग मगरब नवाज हो चुके हैं, वो दूर के ढोल सुहाने हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अमेरिका जाने के बाद डॉलरों की बरसात हो जाएगी और ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी, वो दूर से नज़र आता है. लेकिन वहाँ पर मेरा ख्याल है लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं पाकिस्तान में. वहाँ पर जो आम आवाम है हमारे जैसे, वो ज़्यादातर वक्त और अपने काम को काम समझते हैं और वो काम को काम करवाया भी जाता है, मजाक भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, लेकिन काम को काम समझते हैं. हमने काम को भी खेल कूद बना दिया है, और खेल कूद तो पहले से ही खेल कूद है. तो और ये जो एक चेंज थोड़ा सा आता है, और कल्चरल शॉक लगता है, ये कुदरती बात है. जब मैं वापस आया तो वहाँ पर ज़्यादातर काम ईमेल के ज़रिए से होता था, गुफ्तगु, लोगों के पास वक्त नहीं होता है ज़्यादा बैठ के गप्पे मारने का, क्योंकि काम के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है. सरमायादाराना निज़ाम है, उसको समझना चाहिए. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नौजवान मौजूद है. पाकिस्तान की आबादी 23 साल से नीचे तकरीबन 12 करोड़ है. तो 12 करोड़ बच्चे हमारे पास हैं। इन 12 करोड़ बच्चों को अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से मुराद इनको ट्रेन करें, इनकी तरबियत करें, तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे हमसायों वाले इंडिया और चाइना, वो इसी चीज को देखकर उन्होंने भी यही काम किया। वहां पर कुछ लोग पहले पढ़ने गए और फिर वापस आए और उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क में ये चीजें बेहतर की जा सकती हैं, तो उन्होंने बेहतर की। और मैं उस तरह से सोचता हूँ, और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में वैसे चैलेंजेस नहीं है, जैसे कि ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो कि इतनी हमारे मजहब के हवाले से या हमारा जो ब्रॉटअप हुआ उसके हवाले से इतनी अफोर्डेबल नहीं है। वहाँ पर आप अपनी औलाद को रेज करना नहीं चाहेंगे कम्फर्टेबली, क्योंकि हमारी कुछ अपनी वैल्यूज हैं, उनकी अपनी वैल्यूज हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि इस जिस वजह से मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। चैलेंजेस वो पहले भी पाकिस्तान वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान काफी तेजी से तब्दील हो रहा है। अवेयरनेस ज्यादा आ रही है, लोगों को आगाही ज्यादा मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में ज्यादा पता चल रहा है, और अपॉर्चुनिटीज दस्तरस में है जो चाहता है, और जो नहीं चाहता है तो उसके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज थी नहीं।
2: जी डॉक्टर इमरान, तो आप हमारी जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका काफ़ी विजन भी है, इंटरनेशनली भी आपने सारा विजिट किया और काफ़ी क्लोजली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशली हमारे यहाँ यूसीपी में क्या ऐसी चीज़ें हैं, किन पैरामीटर्स को आपको फौरन जो अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है, इस पर थोड़ी रोशनी।
3: अभी जो यूसीपी की रिसेंट लीडरशिप है, वो खुद भी फुल फाइटर हैं, वो भी दुनिया देखा है, और जिस तरह से वो चीज़ों को चला रहे हैं, और उनका एम्फोसिस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ है, क्रिएटिविटी की तरफ है, इनोवेशन की तरफ है, अंडरग्रेड प्रोग्राम्स को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ है, तो यूसीपी ऑलरेडी एक रोल मॉडल बना हुआ है दूसरी लाहौर की यूनिवर्सिटियों के लिए। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परफेक्ट है, यहाँ पर चैलेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी हैं और हर जगह पर होते हैं। इवन बेहतरीन से बेहतरीन इदारों में भी हमें लगता है कि कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ मसला होगा, और इंसान को पैदा इसलिए किया गया कि उन मसलों को हल करे, ना कि मसलों का अवेला करे। यूनिवर्सिटीज को ये अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें रटे से बाहर निकलना चाहिए, और जब जिंदगी में रियल लाइफ में अगर मिसाल के तौर पर मैं घर जाता हूँ और यूपीएस खराब हो जाता है, तो वो एमसीक्यू नहीं बनेगा कि बताइए कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, वो तो कहेगा भाई मुझे बत्ती लाकर दो, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब हमें ऐसा आम जिंदगी में जिस तरह से सवाल आता है, तो वो सवाल जो है वो कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता कि इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसका ट्रू फॉल्स करना है, या फिर इसका एमसीक्यू बनाना है, या इसका पैटर्न हमें पता चले। तो इसी तरह से अगर हम अपने मसाइल को देखें तो, और अपने तालीमी निज़ाम को देखें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, चाहे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं फार्मेसी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये जानना है कि ये जो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ इसका आम लोगों को या मुझे अपनी जात को किस तरह से फायदा हो सकता है। तो उससे फिर आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा, और ये चीज तमाम तालीमी इदारों को करने की जरूरत है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, और ऑलरेडी हो रही है, लेकिन वो उन खास मखसूस तबकात के अंदर हो रही है। जैसे अगर हम पाकिस्तान के जो स्नोबिश इदारे हैं जो काफ़ी महंगे महंगे हैं, जिसमें साल की 10 लाख रुपए फीस है, वो यूसीपी एक अच्छा काम ये कर रही है। अमूमन लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ब्लेम करते हैं कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है कि इन्होंने हमारी यूथ को एक जगह पर कम से कम बिठा तो दी है। अगर ये भी ना होती तो पब्लिक सेक्टर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन बच्चों को संभाल सकता। अब चूंकि ये बच्चे आ चुके हैं, तो अब हमें ये चाहिए कि इन बच्चों को नई राह दिखाएं, नई उम्मीद पैदा करें इनके अंदर, और ये दिखाएं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। किसी भी शोबे में चले जाएं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखें तो हमारे पास सिर्फ 700 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, 25 करोड़ आबादी के लिए 700 इंडस्ट्री है, जबकि ये नंबर ईजिली बढ़ाया जा सकता है, और हम इसको 5,000-6,000 पे भी लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जा सकते हैं, जब हमारे फार्मासिस्ट उस समय रिटेन होंगे और ये सोचेंगे कि हमने सिर्फ दवाई जो है ना सिर्फ अपने मुल्कों को, अपने मुल्क के बाशियों को देनी है, बल्कि साथ में नेबरिंग कंट्रीज को भी देनी है, सायों वाले को भी देनी है। तो उस तरह से अगर हम सोचेंगे कि जॉब करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि इस तरह से पढ़ना है कि हमने जॉब क्रिएट करनी है, फिर ज्यादा फायदा होगा, मेरा यही ख्याल है।
2: जी डॉक्टर इमरान, अभी जैसे आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात की, तो अभी क्योंकि एक टाइम होता है हमारी एक शॉर्ट सी ब्रेक है, और इसके वापस आके हम इंशाल्लाह यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं और उनकी क्या क्या हैं सारी चीज़ें। जी सामीन, कीप लिसनिंग FM 92.6 एंड लेट्स टेक अ ब्रेक।

0: हमें अब खुद से कुछ बनाना पड़ेगा, और बनाकर दुनिया को और अपने पाकिस्तानी जो दोस्त यानी कि जो पाकिस्तानी अवाम है उनको देना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर इमरान, अभी जैसे यू नो अभी हमने बात की स्टूडेंट्स की भी, और ये कि हम अपनी एक टिपिकल एक थ्योरेटिकल नॉलेज को हम कमर्शियलाइज या हम इंडस्ट्री की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे जैसे अब यूसीपी से हम खुद एक फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से बिलोंग करते हैं, तो हम फैसिलिटी वाइज तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं, उनको फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समटाइम्स स्टूडेंट्स में एक फियर होता है रिसर्च को लेके, कि वो डर रहे होते हैं कि हमें रिसर्च आती नहीं है या हम रिसर्च कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। तो स्पेशली अंडर ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको कैसे आप गाइड कर
0: पहले
1: सकते
0: तो
1: हैं,
0: हमें
1: कैसे
0: यह समझना
1: मोटिवेट
0: पड़ेगा
1: कर
0: कि जो
1: सकते
0: लफ्ज़
1: हैं।
0: है लफ्ज़ों के अंदर, लफ्ज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। अब रिसर्च का नाम जहन में आते ही हमें आइंस्टाइन याद आ जाता है या न्यूटन याद आ जाता है। हालांकि रिसर्च ऐसे नहीं, हर बंदा रिसर्च कर रहा है, हर दिन रिसर्च कर रहा है। हम जब मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो रिसर्च करते हैं, तो चीज़ खरीदते हैं। जूती भी खरीदनी हो तो पहले 10 जूतियाँ देखते हैं और फिर देखते हैं कि भाई कौन सी जूती पहनी है और कौन सी नहीं पहनी। इसी को तहकीक कहते हैं। अब अगर इसी ये तहकीक जो है वो हम हर घर हर फैसले में कर रहे होते हैं, हमने अगर कहीं सफ़र करना हो तो हम तहकीक करते हैं कि कौन सी जगह पर सस्ती मिल जाएगी चीज़, कौन सी एयरलाइन पर सस्ती चीज़ मिल जाएगी, नंबर्स जानने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ होगी, वहाँ पर क्या चीज़ होगी। उसी चीज़ को जब हम इल्मी तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी रिसर्च ही कहते हैं। लेकिन हमने रिसर्च को एक पेपर छापने का जरिया बना दिया है, जो कि ठीक है, उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि वो जो पर्चा हम लिख रहे हैं या जो हम तहकीक करने के बाद पर्चा लिख रहे हैं उसका अमली ज़िंदगी में इंडस्ट्री को, सनत को क्या फ़ायदा होगा, और उस तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। और जो तहकीक को समझाने की ज़रूरत है हमारे बच्चों को, कि बजाय इसके कि वो ये समझे कि ये बहुत मुश्किल काम है, तहकीक हर कोई कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि हम क्यूरियस ही पैदा हुए हैं। किसी भी बच्चे को मेरा नहीं ख्याल कि कहा गया हो कि सवाल पूछ जब वो पैदा होता है, लेकिन ऐसा ऐसा जब वो तालीमी निज़ाम में आता है तो उसके सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा काम एज ए रिसर्चर ये है कि उनके अंदर वो दोबारा से जस्तजू पैदा की जाए, क्यूरोसिटी पैदा की जाए, और वो देखें कि दुनिया कैसे चल रही है और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें। उन मालूमात से फिर किसी मेंटोर के साथ जो कि पहले से तहकीक कर रहा है उसके साथ जुड़ा जाए। और पाकिस्तान हमारी फैकल्टी फार्मास्यूटिकल साइंसेज हवाले से मुनफरिद फैकल्टी है पूरे लाहौर के अंदर, के यहाँ पर सबसे ज़्यादा PhDs हैं इस फैकल्टी के अंदर। और इसके अलावा हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है हमारी, हर बंदा जो है वो बहुत काबिल है और बाहर से पढ़ के आया, कोई अमेरिका से पढ़ के आया, कोई जर्मनी से पढ़ के आया, कोई फ्रांस से पढ़ के आया, कोई चाइना से पढ़ के आया। तो तलबा को चाहिए है, और तलबा हम कर भी रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इवेंट करवा रहे होते हैं, अवेयरनेस दे रहे होते हैं। अब स्टूडेंट के अंदर जो डर है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के जो सेशंस हैं वो हम करने चाहिए हैं और उनको बताना चाहिए। अब हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी रिसर्च कर रहे हैं, और उनको सिखाया जा रहा है समर रिसर्च प्रोग्राम के जरिए से कि किस तरह से तहकीक जो है वो अमली ज़िंदगी में फ़ायदा देती है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तहकीक ही करके कोई फैसला लेते हैं, और इवन हमारे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी तहकीक करके ही फैसला करती हैं। तो इस जगह पर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हमारे पास डेटा इकट्ठा हो और वो डेटा जो है उसकी बुनियाद पर हम फैसला साजी करें।
1: जी सर, तो अभी आजकल जैसे आपको पता है कि AI का ज़माना है, अभी आपने मेंटोरिंग की भी बात की कि मेंटोर्स होने चाहिए, तो आप अपनी जो स्टडीज़ के अंदर, आप अपनी क्लास के अंदर, या आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे AI के लिए या कोई ग्लोबलाइजेशन जो मॉडल्स जो हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं?
0: मतलब सबसे पहले तो एक टूल आ गया, टूल है, जैसे आप ये समझे कि कैलकुलेटर आया तो वो एक टूल था। अब वो कैलकुलेटर तरक्की करता करता कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बनने के बाद फिर अब इंटरनेट भी आ गया। इंटरनेट 1995 में आया, लेकिन आवाम ने उसको सीखना शुरू किया 2010, 2012 में, 2015 में, और अब तकरीबन हर छोटे से छोटा बंदा भी है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। अब एक नई चीज़ आ गई जिसको AI कहते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये AI शायद उसको 30 साल नहीं लगेंगे पेनिट्रेट करने में, तमाम लोगों को इस्तेमाल, हर बंदे के इस्तेमाल में आ जाएगी शायद 3 से 4 या 5 साल के अंदर। और उसका फ़ायदा ये है कि अब इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, मालूमात बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन मालूमात से मानी अखज़ करना ये हमारा काम है। मैं अपनी क्लासेस में क्या करता हूँ कि इन टूल से आशना करवाता हूँ, मतलब जैसे जेमिनाई है उसके बारे में बताया और फिर प्रैक्टिस करके दिखाया कि देखो बेटा ये ऐसे हो रहा है। तो जब वो देखते हैं तो वो खुद खुद क्यूरियस होते हैं, और वो फिर ना सिर्फ मेरी ही क्लास के मुतालिक वो चीज़ें सवाल करते हैं बल्कि दूसरी क्लासेस के अंदर भी और अपने दूसरे भी मामलों के लिए वो AI को यूज़ करते हैं। अब इसका एथिकल यूज़ होना चाहिए। अब मकसद यह है कि हमारा हम आसानी की तरफ भागते हैं, इंसान हमेशा से आसानी की तरफ भागता है, लेकिन मालूमात या मैं लाइब्रेरी में चला जाऊँ और बहुत सारी किताबें हो तो अभी तक पीके वाली कोई साइंस डेवलप नहीं हुई है कि वो कोई किसी को टच करे और उसके अंदर सारा इल्म ट्रांसफर हो जाए। तो इल्म हासिल करना तो खुद ही कर पड़ेगा, मैं अपना खाना मुझे खुद ही खाना पड़ेगा, कोई मेरे लिए खाना तैयार करके अच्छा करके वो मेरे सामने तो रख सकता है, लेकिन

0: अल्टीमेटली खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। तो इसी तरह से मालूमात तो हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उन मालूमात को समझना और उनके दरमियान में ताल्लुक पैदा करना और ताल्लुक पैदा करके कुछ मसाइल को हल करना, ये अब अहम ज़रूरत बन गया है। और AI के इस्तेमाल से हम ये काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोग जो है वो कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने अभी $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अरब के अंदर, आजकल UAE के अंदर आज के दिन AI वीक मनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, और इसको जो जल्दी अडॉप्ट करेगा वो कुदरती तौर पर सीखना चाहिए। लेकिन सीखने का तरीकाकार नहीं बदलेगा, मतलब ये समझा जाए कि शायद AI खुद बखुद ही सिखा देगी, ऐसा नहीं होगा। AI की मदद से हमें सीखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आज के दिन में जो सबसे अहम और कीमती चीज़ है वो सवाल पूछना है। तो आप सही सवाल पूछना शुरू करते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है जिसमें सिर्फ सही सवाल पूछने की ट्रेनिंग दी जाती है, और वही कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी तरह से बच्चों को सही सवाल की तरफ लगाया जाए, उनसे पूछा जाए कि कैसे काम चल रहा है।
1: जी सर, माशाल्लाह आप एक बड़े
0: सीरियस हो गया
1: नहीं सर, इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप माशाल्लाह बड़े एक पैशनेट, एक रिसर्चर के साथ साथ एक बड़े डेडिकेटेड टीचर भी हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, और कोई माशाल्लाह बहुत, कोई रिसर्च में कोई आगे, कोई बड़ा नॉटी, कोई बड़ा शाइसा, कोई बहुत। तो आप जो क्लास में कोई जो डल स्टूडेंट्स हैं, जो आप फील करते हैं कि बड़े डाउन से बैठे हुए हैं,
0: मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती होते हैं,
1: उनको आप कैसे, मतलब उनको कैसे एक्टिवेट करते हैं, आप कैसे उनको इंगेज करते हैं क्लास के अंदर?
0: उनके साथ उन जैसा थोड़ा सा बनना पड़ता है, और वो बच्चे ज्यादा कीमती होते हैं। अगर हम देखें तो ये जो बैक बेंचर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो ये ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ रहे होते, ये आते हैं सीखने के लिए, ये आते हैं खेलने के लिए भी आते हैं। लेकिन अगर इनकी एनर्जीज को खेल खेल के अंदर पढ़ा दिया जाए, अब गेमिफिकेशन आ रही है बहुत ज्यादा तालीम के अंदर भी, चेंजेस आ रही हैं कि हम गेम्स के जरिए से भी बच्चों को खिला सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं उनको, कि भाई उनको थ्रो कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उनको कि ये काम कैसे होगा, और वो फिर उनको तहकीक पे लगा सकते हैं, उनको असाइनमेंट्स ऐसी दे सकते हैं जो कि उनके लिए यूजफुल हों। तो वो जो इंगेज अमूमन खुद भी, पहले तो ये है कि उस्ताद को ज़रा उस्तादी से निकलकर आम बंदा बनना पड़ेगा, कि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ ना समझे, वो भी आपको अपने आप को एक तालिब इलम ही समझे। तो जब तालिब इलम बनकर ही उस्ताद अपनी क्लास में जाएगा तो वो फिर एक जो हेजिटेशन है स्टूडेंट की वो खुद ब खुद ही ख़त्म होगी। तो इसमें टीचर्स को भी थोड़ा सा रोल प्ले करना चाहिए कि वो उस्तादी के, अपने आप को उस्ताद या सेलिब्रिटी बनाने की बजाय कोशिश करें कि बच्चों के लेवल पर आए और बच्चों से गुफ्तगू करें। और जैसे हम अपने बच्चों से घर पे गुफ्तगू करते हैं, इसी तरह से इनको बच्चों को भी अपना बच्चा समझेंगे तो यकीनन उनके दरमियान में जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी।
1: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी खूबसूरत बातें की हैं, और आई होप कि हमारे सामीन ने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत चीज़ें आपसे लर्न की होगी। मैं खुद यहाँ पे बैठी हुई एज अ होस्ट आपकी बहुत मोटिवेट हो रही हूँ आपकी बातें सुन के। जी और इसके साथ ही अब हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, और अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त, और हमारा सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो.
1: And now you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
2: अरे ये किस चीज की आवाज है?
3: क्या तुम्हें पता नहीं ये लाहौर की मशहूर डिश टकाटक की आवाज है.
2: टकाटक ये कैसा पकवान है?
3: जी बिल्कुल ये पकवान ही है. जैसे पंजाब का मशहूर शहर लाहौर है वैसे ही लाहौर का मशहूर पकवान टकाटक है. वैसे तो लाहौर के बहुत मशहूर खाने हैं मगर टकाटक की बात ही अलग है.
2: वाह क्या आप मुझे इसके बारे में मजीद बता सकते हैं?
3: बिल्कुल बता सकता हूँ. टकाटक ना सिर्फ अपने जायके बल्कि अपनी आवाज की वजह से भी मशहूर है. इस खाने का असल ताल्लुक कराची सिंध से है मगर अब ये लाहौर पंजाब का मशहूर पकवान बन चुका है. एक और मजेदार बात आपको बताता चलूं, इसको कराची में कटाकट भी कहा जाता है और लाहौर में टकाटक कहा जाता है.
2: अच्छा ये नाम टकाटक कैसे पड़ा?
3: इसका ये नाम इसकी आवाज की वजह से पड़ा है. जब एक बड़े से तवे पर दो तेज धार वाले चमचे टकराते हैं तो टकाटक की आवाज आती है. अब ये पकाने वाले की महारत पर मुनहसिर है कि वो इसको कितनी महारत से बजाता और बनाता है.
2: आपने ये तो बताया ही नहीं कि टकाटक किस चीज से बनता है.
3: तो मैं आपको बताता चलूं, टकाटक बनाने में बकरे के मुख्तलिफ अज्जा इस्तेमाल होते हैं जैसा कि गुर्दे कपूरे दिल चांप वगैरह. इन सब अज्जा को मिसाला जात के साथ मिलाकर भूना जाता है और इस तरह से टकाटक तैयार हो जाता है. टकाटक के तैयार होने के बारे में मजीद जानते हैं एक मशहूर शेफ से.
4: इसमें सबसे पहले प्याज डलता है, फिर हरी मिर्च होती है, टमाटर होते हैं, मक्खन होता है, देसी घी है जो वो जिसमें आप कहेंगे वो बना देंगे, और लाल मिर्च होती है, गर्म मसाला होता है, काली मिर्च होती है, और लहसुन वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, दही होता है, और इसके अलावा ये कि तवे पे इसके अच्छे से बुनाई करनी चाहिए जितना हो सके. जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा. जिस पर चांपे भी हों और सादा की डल है लेकिन ज़्यादा बेहतर जो मक्खन या देसी घी में बनता है, और कीमा भी हमारे पास होता है, तवा कीमा भी और बटर कीमा भी.
3: जब मक्खन शामिल किया जाता है लजीज भुने हुए गोश्त में तो आय हाय हाय हाय क्या खुशबू आती है.
2: मजेदार.
3: यहाँ आपको एक और बात भी बताता चलूँ, टकाटक में अपनी मर्जी के अज्जा भी शामिल करवा सकते हैं जैसा कि कुछ लोग खाली चांप, कुछ दिल या गुर्दा और कुछ सब मिक्स करवाना पसंद करते हैं. क्या आपको पता है लाहौर में टकाटक खाने की भी खास जगह है जैसा कि लक्ष्मी चौक, भाटी गेट, गवाल मंडी, टक्साली गेट और अनारकली. टकाटक तो लगभग सारे लाहौर में मिलता है मगर इन कुछ जगहों की बात ही कुछ और है. यहाँ मिलने वाला टकाटक सबसे मुनफरिद होता है.
2: मगर ऐसा क्यों?
3: क्योंकि यहाँ के शेफ कई साल से टकाटक को बनाते आ रहे हैं, कुछ का तो 20-20 साल का तजुर्बा भी शामिल है. इसी बारे में एक मशहूर होटल के मैनेजर की राय सुनते हैं.
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अहमद है और मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट पर जॉब करता हूँ जिसका टकाटक बहुत मशहूर है. हमारे पूरे लाहौर के अंदर हमारा टकाटक जो स्पेशली है वो बड़ा मशहूर है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हम गेस्ट के सामने तैयार करते हैं और बिल्कुल फ्रेश तैयार होता है, और इसकी आवाज़ से लोगों अट्रैक्टिव होते हैं और वो खुद ही खींचे चले आते हैं इस तरफ, और हमें किसी एडवर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. और दूसरा हमारा रेस्टोरेंट जो है वो तकरीबन 20 साल से लाहौर के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा टकाटक बहुत अच्छा है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं.
2: OIC, ये बात बहुत दिलचस्प है. अब ये भी जरा बता दें कि ये किस वक्त तैयार किया जाता है.
3: टकाटक को शाम के वक्त तैयार किया जाता है. जहाँ टकाटक तैयार होता है वहाँ का माहौल अलग होता है. आसपास के लोग इसकी आवाज़ सुनकर जमा हो जाते हैं और इस मक्खन में तैयार होने वाले लजीज पकवान को बनते हुए देखते हैं, और फिर इसकी लजीज खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती है. फिर इसको कोई भी खाए बगैर रह नहीं सकता.
2: अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है. टकाटक को बनने में कितना वक्त लगता है?
3: टकाटक को बनने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, और ये 10 से 15 मिनट इंतजार के बहुत खास होते हैं क्योंकि इसके बाद एक लजीज पकवान खाने को मिलता है.
2: हम भी इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और टकाटक खाने चलते हैं, मगर जाने से पहले ये भी बता दें कि इसको किस तरह खाते हैं.
3: इसको रोटी या नान के साथ खाया जाता है. लेकिन कुछ लोग तो टकाटक के साथ रायता या सलाद लेना भी पसंद करते हैं, और कुछ लोग टकाटक को बगैर किसी इजाफी चीज के साथ खाना पसंद करते हैं, और सिर्फ नान या रोटी के साथ इसकी लज्जत का भरपूर फायदा उठाया जाता है।
2: जी बिल्कुल, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। वैसे लाहौरी किस मौसम में ज्यादा टकाटक खाते हैं?
3: वैसे तो इसको किसी भी मौसम में खाया जा सकता है, मगर इसको खाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे बेहतरीन है। जब सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम हो और सामने टकाटक का तवा बज रहा हो, तो फिर इस लम्हे के क्या कहने।
2: अब तो बस हो गई है, सर्दी भी है और गर्मा गर्म मक्खन में बकरे के अज्जा को भूनने वाले इस पकवान का सुनकर मेरी भूख भी बढ़ गई है।
3: इसीलिए तो कहते हैं, बंदा लाहौर आए और टकाटक ना खाए तो इसको लाहौर अधूरा सा लगेगा।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की
1: दुनिया। एंड नाउ यू आर गोना लिसन एन एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री ऑन 92.6 FM यूसीपी की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: Halifax University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Matchday Point 6.
3: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: पाकिस्तान का नाम रोशन करना। जाग जाग, जाग जाग, पाकिस्तान जाग जाग।
1: ये आवाज है

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCT की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।
1: Are you tired of feeling

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: Station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we are live now. नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है, ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Magical Point 6.
3: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।
1: फन, एंटरटेनमेंट, न्यूज, नॉलेज 24/7 ओनली ऑन यूसीपी एफएम 92.6। यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।